तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ, चैनपुर बजार, त्रिचोक। प्रोभाइडर पदम रसाइली, ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9183577।

पार्थिवास एफएम समय सूचन यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 6 बज्यो।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98621 37744 र 98153 87775।

0: is pending. And this is the new driver. His name is John.
1: He doesn't look like a driver to me. Hey, what are you looking at? What are you looking at?
0: We've got to engage the safety lock. Kids run around the house, so you have to be careful, ma'am.
2: What an advice. Ma'am, should I shoot him with a revolver?
3: Sir, that's not a revolver. It's a pistol.
4: Oh, they're the same.
5: Madam, ye naya driver hai. Iska naam jo hai.
1: Dikhta to nahi hai ye driver jaisa. Hey, kya dekh raha
3: hai?
1: Kya dekh raha hai? Bata mujhe.
3: सेफ्टी लॉक लगाना भूल गए. घर में बच्चे घूमते रहते हैं ना. संभाल के रहना होगा मैडम.
6: क्या तू एडवाइस कर रहा है मैडम? इसी रिवॉल्वर से को केस है.
3: ये रिवॉल्वर नहीं
6: क्या?
3: पिस्तौल है.
4: कोदार से.
5: कोदार नॉट से.
3: रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स होते हैं, पिस्तौल में 8 होते हैं. अब मैं जाऊं मैडम.

0: मैडम ये नया ड्राइवर है इसका नाम जो है
1: दिखता तो नहीं है ये ड्राइवर जैसा। ए, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है बता मुझे।
0: सेफ्टी लॉक लगाना भूल गए, घर में बच्चे घूमते रहते हैं ना, संभाल के रहना होगा मैडम।
2: क्या तो एडवाइस करा मैडम, इसी रिवॉल्वर से को केस है।
0: ये रिवॉल्वर नहीं पिस्तौल है।
3: कोतार सेम,
0: कोतार लॉक से रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स होते हैं, पिस्तौल में 8 होते हैं। अब मैं जाऊँ मैडम।
4: बट आपको सर एक चीज गेस कर दी है कि कौन सी मेरी गर्लफ्रेंड है कौन सी
5: वाइफ। दिस इज गर्लफ्रेंड एंड दिस इज वाइफ।
6: एंड हाउ कैन यू से दैट?
5: बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द डॉग।
7: आपके पीछे कौन है?
8: कोई नहीं है।
7: कोई नहीं है ना, इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।
9: आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए।
7: आपके पीछे कौन है?
8: कोई नहीं।
7: कोई नहीं है ना, इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।
9: आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए।
7: कौन है?
8: कोई नहीं।
7: कोई नहीं है ना, इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।
9: आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए।

0: आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है?
1: क्यों आपको नहीं पता?
0: मुझे तो पता है, लेकिन आप मेरे दर्शकों को बता दो।
1: ओके, सो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में स्थित है और उसका नाम अंकोर वट है।
0: देखो आमिर भाई ने अभी अपने फैंस को इंट्रोड्यूस किया उनकी गर्लफ्रेंड।

0: लाइट की गाड़ी।
1: कोई आम मिस्त्री होता तो इस तरह से इस छेद को बंद कर देता, लेकिन भाई ये है पढ़ा लिखा मिस्त्री, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बना हुआ मिस्त्री, तो ये कुछ अलग ही टेक्निक से इस छेद को बंद करेगा। तो पहले इस भाई ने सीमेंट लगाया, फिर मसाला लगाया और अब इसको प्लेन कर रहा है। ये अंतर होता है भाई एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ मिस्त्री में। कोई आम मिस्त्री
2: यदि यो मेरो ट्रिक काम गर्यो भने मलाई डाक्टर बनिन कसैले रोक्न सक्दैन।
3: दादा के भयो तपाईँलाई?
4: एक रील वायरल हुई थी कि तेरा घर जाएगा इसमें, तो आपके कौन से जूते पे किसका

0: यिनीहरूलाई थाहा नै छैन कि जुन
1: दोस्ती हद से ज्यादा हो जाए तो यही होता है यार, तंग करना एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है कि

0: की ग्रीफ देते हैं।
1: मुझे एक भी मेरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बता दे जिनको मैंने ग्रीफ दिया है, मैं अपने बाल मंडवा लूंगा।
0: तो आपको क्या लगता है बाकी एक्टर्स की?
1: वो मैं बाकी एक्टरों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं। समझे ना मैडम? मेरी मैं दावे से कहता हूं मैडम कि आप मेरी जो फिल्म, अबे बोलने तो दे।
2: अरे आजकल कैसे कैसे छपरी अच्छा अच्छा माल लेके घूमने लग गए यार।
0: समीर जाने दो, ऐसे तो लोग बोलते ही रहेंगे। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, चलो तुम मेरे साथ।
2: अरे लेकिन उसने तुम्हें छपरी बोला कैसे? अरे आजकल कैसे कैसे

0: पगार क्या लेगा?
1: पगार 10,000।
2: कोई आम मिस्त्री होता तो इस ईंट को ऐसे ही लगा देता, लेकिन भाई ये है पढ़ा लिखा मिस्त्री, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बना।

0: ritual points the deal.
1: What's wrong with you?
0: You are pushing it too much. You are not even. And you can get to a point that you.
2: मेरे घर वालों ने कह रखी है कहीं लड़ाई हो जाए ना तो माफी मांग लो
1: तो नहीं
2: मेरे घर वालों ने कह रखी है कहीं लड़ाई हो जाए ना तो माफी मांग लो
3: भाई जानवरों के गजब कारनामे में
4: अगर आप भी घर बनवा रहे हैं ना तो ऐसे ही टैलेंटेड मिस्त्री को बुलाइए भाई साहब देखिए तो ये कितना बढ़िया जो कॉर्नर होता है ना
5: चल अभी हाथ नीचे कर इसको पता चल जाएगा
4: हाथ नीचे कर हाँ ना ये लूला है ना अकल से लल्लू है और वो देख ओ सीधे हो जा ज्यादा मेहनत मत कर सीधे रहे
2: ये पहला लंगड़ा जो लंगड़ा नहीं है
5: चल अभी हाथ नीचे कर इसको पता
1: मैं वो माता के मैं उठ

0: उन सातों को लॉकअप में डाल दिया?
1: यस मैम।
0: गुड, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती इस मुठभेड़ से संबंधित कोई भी सूचना बाहर नहीं जाएगी।
1: यस मैम।
0: विभाग या परिवार किसी से कोई संपर्क नहीं करेगा और फोन सबके बंद ही रहेंगे।
1: यस मैम।
0: आज रात या तो वो हमें ढूंढ लेगा या हम उसे ढूंढ लेंगे। एवरीबॉडी नीड्स टू बी ऑन हाई अलर्ट। सचेत रहिए।
2: मैडम आप रुक जाइए, आपको गोली
0: बंदूक की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी।

0: कुछ ऐसे पांच नेपाली रैप्स जिन्हें अभी हर कोई खूब सुन रहे हैं, क्योंकि इन रैप्स में सिर्फ वाइब नहीं बल्कि वॉइस भी काफी तगड़ा हिला देने वाला है। और फर्स्ट वाला रैप सुनकर तो आप सबको काफी तगड़ा फील आएगा। उससे पहले नेपाल वाले लाइक करें, कमेंट में नेपाल लिखिए और सब्सक्राइब। नंबर पांच, आक्रमण।
1: दोस्तों बुरा लिया आक्रमण करते स्टेडियम में, दस बार रैपर ला लड़ा रहा बनाओ दिस स्टेडियम में।
0: नंबर चार, ऑल राइट। हमें चिल लाइक पनी हेलो हिप हॉप सॉन्ग, हमें डांस पार्ट टाइप पनी टिक टैक सॉन्ग, हमें इस ब्लैक थिंग अच्छे। नंबर तीन, बैंडो। नंबर दो, नो कीजी।
2: First time in Nepal beatbox plus freestyle rap.
3: Check it out. It's your boy Zonky Fu. Beatbox man. Sudan Sake. Sake Dosye. Yeah. Tony.
2: First time in Nepal.

0: सुबह तू जब सो के उठा था तो किसके साथ सो के उठा था?
1: किसके साथ? किसके साथ?
0: ये अपने अरमानी तारे जारा के साथ उड़ा कर रहा था।
1: तुम?
0: मैं लेफ्टी हूँ, मेरे पिछवाड़े पे फोड़ा है, मेरी बीवी फॉरनर है, शी फ्रॉम नेपाल, और ये सारी बात मेरे अलावा एक और इंसान जानता है।
1: और वो इंसान कौन है जानते हो?
0: ये नेपाली। तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता था, तूने सारी बातें इसको बताई ही नहीं। तुम लोग दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगी नहीं?
2: नहीं नहीं नहीं।
0: हाँ की ना?
2: ना।
0: हाँ की ना?
2: ना।
0: हाँ की ना?
3: ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी जान।
0: बस पहले हम तीनों में असली जॉली कौन है उसकी बात करते हैं।
2: मैं
0: चुपट तेरे पास बाद में आता। तू जब यहाँ आया था तो किसके साथ आया था? तू इसके साथ। और सुबह तू जब सो के उठा था तो किसके साथ सो के उठा था?
1: इसके साथ। किसके साथ?
0: ये अपने अरमानी तारे जारा के साथ उड़ा कर रहा था।
1: तुम?
0: मैं लेफ्टी हूँ, मेरे पिछवाड़े पे फोड़ा है, मेरी बीवी फॉरनर है, शी फ्रॉम नेपाल, और ये सारी बात
4: त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यो मैले केटीको त्यो हुन्छ नि त्यो देखाएँ, त्यसमा मैले दुध खाएको छ नि, त्यसको लागि भनेर गरेको होइन कि त्यो भनेको। खासमा मैले त्यहाँ हातमा रक्सी सामान सक्दिनँ किनकि म रक्सी खाँदिनँ होइन, म स्मोक गर्दिनँ, ड्रिङ्क गर्दिनँ, 18 वर्ष भयो माछा मासु खाँदिनँ, खाएको छैन,
5: त्यो हो र
4: म प्योर भेज हो। भन्नु खोजेको चाहिँ अब त्यो दुध देखाएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो है खासमा त्यो देखाउनु खोजेको, खासमा चाहिँ म रक्सी सक्सी देखाउँदिनँ भनेपछि मेरो जुनै पनि मिज भिडियो नि रक्सी सक्सीहरू छैन क्या त्यहाँ।
5: म त्यो सबैले त्यही नै बुझ्छु कि मैले पनि त्यही नै बुझेको।
4: त्यो भिडियोमा चाहिँ
6: मैले भनेको भएन भने हुँदैन, मैले टिकट पाएन भने छोड्छु। हाम्रो गीतले अघि के भन्यो उठ्नु न, उभिएको उभिएको भरे 9 बजेसम्म मैले भनेको भएन भने हुँदैन, मैले टिकट पाएन भने छोड्छु। हाम्रो गीतले अघि के भन्यो उठ्नु न, उभिएको उभिएको भरे 9 बजेसम्म
7: ले मित्र, ले मित्र, ले मित्र, तुझे ले तुझे रोय, तुझे ले तुझे रोय, तुझे ले।

0: हेलो, ऐसे कैसे गाड़ी उधर ले रहे हो?
1: तो कैसे जाऊँ?
0: जब भी इधर या उधर लेते ना तब इंडिकेटर देना होता है।
1: इंडिकेटर? ये क्या होता है?
2: वुमेन।
0: अरे वो सामने जो लाइट दिए ना उधर भी दिए, राइट साइड पे। जब भी लेफ्ट जाते तो लेफ्ट वाला और राइट जाते तो राइट वाला। कोई भी बंदा आ रहा था ना उसको इंडिकेटर देना होता है, समझ में आया?
1: अच्छा, किसने बोला तुम्हें ऐसा?
0: बोला नहीं, गवर्नमेंट का रूल है ये।
1: सॉरी। ये लो।
3: Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale

0: देखो रोटी
1: भाई तू खाएगा? नहीं भाई।
0: प्याज रोटी अंडा भी है, अंडा खा लिया अभी मैं।

0: पापा और मैं थोड़े से अलग हैं।
1: थोड़े से? इस घिनौने के साथ कोई होली नहीं मनाता, तुमने सुहागरात मना ली।
2: मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ मुझे किलर के बारे में कुछ बताना है? मेरे साथ
1: एक और अंधी इसके पीछे।
2: तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैंने तुम्हारे लिए सर्जरी सब करा ली बाबा?
3: मैं और क्या नहीं, मैं बिलीव करता
1: हूँ। छोड़ उसको बेटी, क्यों मत किए क्या लेना? ये हो क्या रहा है माइका लाल, हर जगह से लड़की टपक रहे इधर उधर।
3: अरे मेरा फॉल्ट थोड़ी है कि उन लोग इधर उधर से टपक रहे ले। अबे दरवाजे से आएगा तो मेरा फॉल्ट, कबाड़ में होगा तो मेरा फॉल्ट। ब्लू ब्लू मेरा कोई गेम नहीं है। भाई तीन पत्ती क्या गेम खेल रहे ले तुम लोग?
1: अरे साइलेंट साइलेंट यार, मैं समझ गया, ये वो जॉलियो की बीवी है।
0: पापा और मैं थोड़ी से अलग है।
1: थोड़े से? इस घिनौने के साथ कोई होली नहीं मनाता, तुमने सुहागरात मना ली।
2: मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ मुझे किलर के बारे में कुछ बताना है? मेरे साथ
1: एक और अंधी इसके पीछे।
2: तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैंने तुम्हारे लिए सर्जरी सब करा ली बाबा?
3: मैं और क्या नहीं, मैं बिलीव करता हूँ।
1: छोड़ उसको बेटी, क्यों मत किए क्या लेना? ये हो क्या रहा है माइका लाल, हर जगह से लड़की टपक रही।
4: मैं थोड़े पॉपकॉर्न अंदर ले जाऊंगा, अंदर डालो, नीचे डालो, नीचे डालो। अब क्या ठीक है? कोई नहीं सर। हे बाबा, मैं थोड़े पॉपकॉर्न अंदर ले जाऊंगा, अंदर डालो, नीचे डालो, नीचे डालो। अब क्या ठीक है? कोई नहीं सर।
5: तर मैले अगाडि नै पेट्रोल हाल्ने पैसा राख भनेको होइन, तैले गरेर मेरो नि बिजोग भयो बेरोजगार। रुक रुक रुक रुक, तेरो कस तेरो कस,
6: सट्टा लाएर जग्गा किनेर एउटा भिल्ला बनाउनु पर्छ जस्तो सोचिरहेको छु बहिनी, त के भन्नुहोस् भन्दा?
5: हुन्छ यो किन्ने नि हुन्छ, तेरो बुलेट बाइक उता राख्दिन, किन्दै किन्दै आज बोला भने किन्दै।
6: त्यही त अलिकति सानो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई, लाग्दैन
5: गर गर गर हिँडिदि, एउटा पेट्रोल हाल्ने पैसा छैन किनि जग्गा। तर मैले अगाडि नै
7: Thank you.

0: इतनी लड़ाई हो गई फिर भी तुम मेरे लिए खाना लाई हो। आई एम सॉरी, कई बार मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ।
1: सच में सॉरी बोल रहा
0: हूँ। सच में आई लव यू।

0: अरे हाँ मम्मी,
1: किसके साथ में?
0: वो तो गर्लफ्रेंड साथ है।
1: अभी तक घर नहीं आया?
0: अरे उसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए मम्मी।
1: ठीक है।
2: जीवन में खाली गदा मतलब बहरे हुए देना।

0: अलग ही लेवल का बंदा था।
1: जैसे बेटा हमको तुमसे बहुत उम्मीद है, मन लगा के पढ़ना और खानदान का नाम को रोशन करना।

0: भैया
1: बोलिए
0: भैया
1: बोलिए सर बोलिए।
2: अभी अभी जो लोड उठवाया है इसमें कितना पीस चाहिए?
1: इतना है, तीन पीस तो है।
2: तो तुम तीन पीस जो सरिया उठवा रहे हैं 5 टन की मशीन में, तो किरण का बेइज्जती नहीं करवा रहा है?
1: तो क्या करे, फोरमैन बोल रहे तीन पीस सरिया उठा के नीचे कर दो।
2: हाँ तो वो बोलेगा कि अपना चड्डी भी उठवा दो, तो चड्डी भी उठवा देना।
3: You